0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।